0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

0: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन। मन का अमन।
1: रेडियो अमन

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी अपनी आवाज़।

0: हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम
1: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: Τώρα είμαστε με τη Τάρτα που γεννήσε από τα σαπάρ και δεν τα σα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με τη μόχο κόρτα national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γυλεύε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβαλα να χωσούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरों उदार तो हुई या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चि कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: شام از دی چه دم رکشلا ریزلت یا دای دارتا ہوئی چه داو موتا چیرتا ملاویشی
1: تار کھنا داو تو دفا بانی گل شے اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالے پر شوئے مارکی شے دیشوان مین ڈسٹیبیوٹر حافظ دیر سیب سار او درتا ملاویشی موسیقی

रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज़ रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है।

अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-9332-580।
1: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
2: अमन की फ्रीक्वेंसी, शऊर की आवाज़ और खिदमत की पैगाम। रेडियो मन 88।

आपकी पसंद, आपके एहसास और आपके लम्हों की खूबसूरती, सब कुछ एक ही जगह, जहां हर प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए। रेडियो अमन 88.4 खड़क, आपकी अपनी आवाज़।

लम्हे जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

जिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम, जिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वॉश, राइस फेस वॉश और दिन अलावा जिफा कंपनी शिफा तेल और बला खबरदार स्किन पॉलिश।

0: तड़ाई मासे में जी दार तो ये जी पदसा पर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाते से तारखाना पर सफर के हम एस्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: एस्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई में जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस रंगे सरा प्रोबरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ाले हो चे कराना में कुरता एस्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े थी और स्टूल कुर वाला नफाशोल थी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सराबरो वो दर तो ये या जे पर एस्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना एस्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म कवी जाखर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एस्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पर ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दर तो ये दाओ मोता चेरता मिला वीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर से अपसार उधर ता मिला वीजी।

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक ज्वान रंग अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी ये खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी।

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: Nabi Sardar Zaman. मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
3: हर कदम
4: अहमद भाई जहो हर वर्ष शिशत गोरम पमहमी वर्ष पवरस दानी जातीगी नख को लाश्ता और नड़केगी चेकोरना बाहर उजम
5: हो रे अफगान न दे पकार मखदानो द पारा इश्मा इकनी ड्राप इस्तेमाल का देर जरबदे महना दाने हतमशी और मखबद सफा और कुल इखारी
4: मनना अहमद भाई उस बा इश्मा इकनी ड्राप खाम अखलम जहवाड़म जिजमा मखदाने न सफशी और खैस्तकारी अहमद भाई दुकान पता उखाया
5: होरे दुकान पता इधर सर नोट का मौलाना अब्दुल हालिक टेलर एंड कॉस्मेटिक सेंटर हैबर प्लाजा दुकान नंबर 4 मंगल।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जवन रंग अमन।